चीज़ें जब पाई जाएंगी तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता नहीं फरमाएगा। सबसे पहली चीज़ उसमें से ये है कि तुमने अल्लाह ताला की तौहीद का एतराफ़ तो किया लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे। तुम क़ुरान करीम को तो पढ़ते हो लेकिन उसके अहकामात के मुताबिक अमल पहरा नहीं होते, यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के पाक कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते। तुम शैतान के साथ दुश्मनी का दावा तो करते हो लेकिन उसकी इताअत और फरमा बरदारी से पीछे नहीं हटते हो, यानी शैतान को दुश्मन भी कहते हो और काम सुबह शाम वो करते हो जो तुम्हें शैतान कहता है। तुम ये तो कहते हो हम अल्लाह ताला के महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा नहीं होते। फरमाया तुम ये तो दावा करते हो कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाले जो आमाल हैं वो तुम नहीं करते। तुम दोज़ख की आग से निजात हासिल करने की गिड़गड़ा कर दुआएं तो करते हो लेकिन आमाल और अमल वो कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तुम मौत के हक होने का दावा करते हो लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। तुम अपने भाइयों की ऐब जोई करने में मशगूल रहते हो लेकिन अपने गुरेबान में जान कर अपने करतूत नहीं देखते। तुम अपने रब की नेमतों से हर वक़्त लुत्फ़ उठाते हो लेकिन उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। तुम रोज़मर्रा अपने मरने वालों की कब्रों को देखते हो, उनको दफन करते हो लेकिन उनकी मौत से इबरत और सबक हासिल नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वो 10 चीज़ें हैं जो अहले बसरा के अंदर पाई गईं तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल न किया। हालांकि एक वक्त था अहले बसरा जो दुआ मांगते अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता। आज हम भी गौर व फिक्र करें क्या ये ऐब और ये बातें हमारे अंदर तो नहीं पाई जातीं। अगर हैं तो हमें तौबा करनी चाहिए और नेक काम करने चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप मुस्लिम कम्युनिटी रेडियो 92.1 FM पर उर्दू में ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं।

गुनाह तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखें उस माल दौलत में और उस औलाद में कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। दौलत न तो कोई ताकत है, दौलत न तो कोई इज्जत है, दौलत के ज़रिए न तो इंसान किसी मुसीबत से निजात हासिल कर सकता है। याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो मुसीबतों से, जो तकलीफ़ों से इंसान को हकीकी और यकीनी तौर पर निजात अता फरमाता है। अगर इंसान को अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर यकीन न रहे तो फिर कोई सहारा और कोई ठिकाना इंसान को सुकून और मुसीबतों से निजात नहीं दे सकता। और कुछ लोग वो हैं जो बरकत पर यकीन तो करते हैं, उन्हें बरकत से महरूम होने का एहसास भी है, शिकवा भी करते हैं कि हमारी कमाई में बरकत नहीं, बहुत कमाता हूँ लेकिन ज़रूरत पूरी नहीं होती, कर्ज़दार रहता हूँ, लोगों का मोहताज रहता हूँ। उन्हें खूब एहसास है कि वो अल्लाह ताला की बरकत से महरूम रहते हैं, लेकिन वो दुनिया पर इतना भरोसा करते हैं कि उसको बढ़ाने की तदबीरों में लगे रहते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के काम करते हैं, मसरूफियात में टाइम गुजारते हैं, दुनिया के माल व दौलत के लिए हम सुबह सवेरे से उठकर रात तक दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। कभी हमने सोचा कि हम अगर सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे दुनिया का काम करेंगे, माल व दौलत लेकर आएंगे, इसी के साथ अगर हम सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए मुसल्ले पर खड़े होकर फ़र्ज नमाज अदा कर लेते तो ये जो 12 घंटे का काम किया है इस काम के रिज़क में बरकत आ जाती। अगर हम दोपहर में 10 मिनट निकाल के जोहर की नमाज पढ़ लेते, फ़र्ज अदा कर लेते, तो ये सारा दिन जो काम किया है इस काम में बरकत आ जाती। इसी तरह असर में, मगरब में, इशा में अगर हम 10 मिनट निकाल के नमाज के लिए मुसल्लाह रसूल पर खड़े होते तो यकीनन हमारे रिज़क में, यकीनन हमारे घरों में, यकीनन हमारे कारोबार में बरकत आती। और जब इन नमाजों को छोड़कर, अल्लाह ताला की बंदगी को छोड़कर हम माल व दौलत, बिजनेस और कारोबार करते हैं तो यकीन करें कि वो माल दौलत ज़रूर आएगा, बढ़ेगा, मगर उस माल व दौलत से हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, हमें कभी हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। औलादों पर लगाएंगे, यही औलादें बड़ी होकर नाफरमान हो जाएंगी। कारोबार में लगाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, यही कारोबार एक वक्त आएगा ऐसा खसारा और नुकसान देगा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिश्तेदारों पर खर्च करते रहेंगे, ये माल और दौलत एक वक्त आएगा वही रिश्तेदार, वही अजीज़ हमसे रूठ जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। जो बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर दुनिया वालों के लिए और दुनिया वालों की खुशियों के लिए सब कुछ करता है, आर्जी तौर पर अल्लाह ताला भी उसे सब कुछ देता है, मगर जब अल्लाह ताला फिर उसे पकड़ता है तो रिश्तेदार भी, औलाद भी, सब कुछ, दोस्त यार भी छोड़ जाते हैं, फिर वो अकेले पछताता है और परेशान होता है। उस वक़्त तक इंसान की ज़िंदगी भी ढल चुकी होती है, कब्र नज़दीक और मौत नज़दीक आ चुकी होती है, फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, रिज़क का मालिक अल्लाह ताला है, तो फिर हमें अल्लाह ताला की जो इबादत और बंदगी है उसको हमेशा अदा करना चाहिए, और जो लोग उसको अदा करते हैं अल्लाह ताला यकीनन उन्हें बरकतें अता फरमाता है।